0: ओ तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं,
1: तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं,
0: मैं झूठ कहूं तो कहूं तो।
2: Oh girl, you be mine and this one is done by Tarun Sagar, Alisa Mendoza and